0: उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित है। राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की GDP ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उप रक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल हैं। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR।

फरहत के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े हिस्सों में तेज बारिश की आशंका और खेलों में टेनिस में आर्ना सबलेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में

0: और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमेरिकी युद्ध पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमेरिकी आयात शामिल है। अमेरिका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिविजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75,000 से 80,000 वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
6: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन

0: आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा, लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा, उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज यूपीआई इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ इंडिया फिनटेक सक्सेस स्टोरी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डिस्क्राइब्स इंडियन कम्युनिटी इन श्रीलंका एज इंपॉर्टेंट ब्रिज बिटवीन द टू कंट्रीज। U.S. says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warships. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 U.S. goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Frances Tiafoe enter semifinals of U.S. Open in New York.

का अरोड़ा मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिक्थानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले आज मुंबई में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। ये कल भी जारी रहेगी। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में इस बैठक से पहले पिछली बैठकों के मुख्य निष्कर्षों की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत की संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,365 हो गई है। बचाव दल 5,326 लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिनमें लगभग 589 विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 102 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। चीन की मीडिया के अनुसार इस आपदा में चीन के लगभग 43 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि तिब्बत में 500 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने आशा व्यक्त की है कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता फिर शुरू हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ड्यूजारिक ने कहा है कि इन प्रयासों से तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति के लिए किए जा रहे सभी सार्थक प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमरीकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमरीका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उसके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें भी दागी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 9वां राष्ट्रीय पोषण माह स्वस्थ और सशक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान हर माँ के स्वास्थ्य, हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की खुशहाली से जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से गरीबों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं।
2: हमने पिछले 9.5 वर्ष में 70,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को एक नया स्वरूप दिया है और हमने प्रायोरिटी ली है इसमें। राज्य वित्त आयोग हो, केंद्रीय वित्त आयोग का हो या राज्य के स्वयं का अपने बजट का पैसा, आंगनबाड़ी केंद्र उसके टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके निर्माण की। वहाँ पर बच्चों के लिए टॉयलेट की, शुद्ध पेयजल की, ये उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा है। आज यहाँ पे बाल वाटिकाएं चलती हैं। खेल खेल में कैसे अक्षर ज्ञान और कैसे अंकों का ज्ञान बच्चे वहाँ प्राप्त करते हैं।
1: इस वर्ष पोषण माह का विषय है हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
3: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति केवल विकास तक सीमित नहीं रही बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत भी मजबूत हुई है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि केवल विकास ही नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी जड़ों को मजबूत किया गया। आज हम भव्य राम मंदिर की बात करते हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, सोमनाथ की बात करते हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि देश के सांस्कृतिक धरोहर को पूरी तरह से सृजित और विकसित करने में उन्होंने पहल किया।
1: भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने देश को संभाला उस समय भारत नीतिगत गतिरोध से जूझ रहा था और दुनिया की कमजोर मानी जाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का भी प्रयास किया।
3: उन्होंने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात नहीं की, उन्होंने इस देश के सोच को भी बदलने का प्रयास किया। उनके पूरे कालखंड को हम जब देख रहे हैं तो केवल युगांतकारी निर्णय ही नहीं हुए, आम लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं हुआ, आम लोगों के जीवन के सोच में भी बदलाव आया है। और 25 साल के ये सशक्त सेवा और समर्पण के जो उनके कार्यकाल रहे, जो उनके बेदाग जीवन, लगातार शासन दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास को एक अलग परिभाषा के साथ सामने लाया है।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना के बाद राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिल्ली में पीजी आवासों का निरीक्षण करने और वहां अनधिकृत निर्माण की जाँच के साथ साथ इमारतों से जुड़े रिकॉर्ड की भी जाँच करने को कहा है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय

0: के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति त्रिपाठी बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में 18 स्थानों पर छापेमारी की है। इनमें राज्य के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली, उनकी बेटी और लोकसभा सांसद प्रियंका जारकीहोली के आवास भी शामिल हैं। गुजरात विधानसभा का 3 दिन का मॉनसून सत्र आज गांधीनगर में शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। इस दौरान सामान्य प्रशासन, राजस्व और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े तारांकित प्रश्नों पर चर्चा हुई। पुदुचेरी में तट्टान सावरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गंगा, गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन और दूसरी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 171 सेंटीमीटर, दीघा घाट में 109 सेंटीमीटर और हाथीदह में 165 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। तटबंधों पर दबाव की स्थिति को देखते हुए जल संसाधन विभाग और विभिन्न जिला प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, जहानाबाद और अरवल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाया जा रहा है। 456 सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उसके निर्देशों को संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। आयोग ने कहा है कि संबंधित एजेंसियों को उसके आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के साथ निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहिए। बेन शेल्टन ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज शेल्टन ने कड़े मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। सेमीफाइनल में शेल्टन का सामना अमरीका के फ्रांसिस टियाफो से होगा। दोनों अमरीकी खिलाड़ी पहली बार किसी ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करेंगे। वहीं जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 437 अंक गिरकर 75,140 पर, जबकि निफ्टी 89 अंक फिसलकर 23,547 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वित्तीय मामलों पर अंतिम बैठक मुंबई में। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वाराणसी में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अमरीकी ओपन टेनिस में बेन शेल्टन ने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराकर पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हालचाल है
1: भाई। हालचाल तो अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मौसम का असर है,
0: सर्दी जुकाम
1: हल्का मौसम का बदलाव आते ही ना सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मिलन समारोह तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है,
0: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
1: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं, तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर और हम ठीक हो जाते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हैं जहां हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
0: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग है इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती।
1: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या है ना ये ट्विटर सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं और वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई,
0: वो उन्हें ज्यादा लुभाती है।
1: हाँ तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं बिजी हैं, पढ़ रहे हैं पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर,
0: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो कुछ अलग बातें हो कुछ उनकी पसंद का खाना हो। हाँ। तो फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते हैं, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं या फिर तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है, उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्ति की अच्छी तरह से बात की तो वे भी शामिल होंगे।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हर फनमौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें। उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव उलहना शिकायतें ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाए और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाए।
0: जी यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही।
1: हाँ उन्हें आना पड़ेगा और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ उनके साथ किस तरह से पेश आए और जो अपने समकक्ष हैं अपने बराबर हैं उनको किस तरह से वो ट्रीट करें, तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहें कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: और ऐसा होता है जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारे

0: विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
1: विश्वास बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही विश्वास वाला शब्द है ये विश्वास।
0: यानी हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। हाँ, शब्द के साथ
1: पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता है
0: जी,
1: है
0: ना। और साड़ियों का संसार,
1: मेखला चादर,
0: आसाम ले चलेंगे सबको।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहाँ की। मेखला चादर जब आप पहनते हैं तो उसके पहनने का तौर तरीका, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके हैं,
0: दो हिस्सों में होती है।
1: हाँ, और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको। और वहाँ का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
0: कमर में लपेटते हैं।
1: और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की आपको इमेज देता है
0: जी। और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन, यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों के जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
1: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दाने खासतौर से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते हैं।
0: और उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
1: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर नाक घोंसी कोड़ते हैं और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बना के, साबुत दाल के अन्य तरीके के व्यंजन बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे सकते हैं। और अब हम क्या दे सकते हैं,
0: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं।
1: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है।
0: सुनते हैं
1: ये गीत।

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया हमें सुनाली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपने अपने जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ, तो एक राहत में मिलती है। और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को, जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं, और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेल जोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई है, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायतें तो कर देते हैं, समझ नहीं पाते को और दूरियां बना लेते हैं।
1: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए

0: उन्हें तो घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते। पर ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपनी एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
0: वहीं एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थम सा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में कहा। काश हम सभी ऐसा समझें, सोचें और इस तरह की जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या उसमें जो है ना जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे।
1: हम अकेलेपन के आदि हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे बच्चे जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं या माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है, उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के बहाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी चीजों को देना सीखेंगे। जब आप उन्हें बताएंगे कि बेटा आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और एक श्रोता लिखती है कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है, एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहाँ पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गाँव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, फाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिलाकर 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं। उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौदा

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: इन्हें चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादोर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं

0: मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
1: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, उसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
1: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
1: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूंगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और इससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
1: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं
1: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियां इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
1: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो है
1: पहन सकती हैं।
0: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
1: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसमें पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी,

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना
1: जी। और एक हमारी सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी, तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं, पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो मैं उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
1: हाँ ना, आज बोलती क्या, मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ ये कहती है ना कि मेखला है, यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: और है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर, तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले, अरे सो रही, उठ, मेरे लिए मेखला लेकर आई। सच में तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते, अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है,
1: सरप्राइज गिफ्ट,
0: सरप्राइज गिफ्ट मिल जाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए हमारे, और हमने एक नया आज शब्द लिखा है, विश्वास, उस पर हम बात करने वाले हैं
1: जी,
0: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है।

0: भावार्थ लिए और हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास पर।
0: तो उन्हीं विश्वास है ना हम पर कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है
1: जी।
0: तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है
1: जी। एक साथी कहते हैं विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति वस्तु शक्ति विचार के सत्य क्षमता और चरित्र पर बिना किसी संदेह पूर्ण भरोसा करने की मानसिक स्थिति है। उदाहरण स्वरूप कहूँ तो मंदाकिनी जी और सोनाली बिटिया पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसे रिश्तों समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी जरूरी है।
0: यस आई कैन डू इट। बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास ये दो शब्द बहुत जरूरी है जीवन में
1: जी।
0: खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना। हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए
1: जी।
0: है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखती है कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है। बस यही तो विविध भारती की खासियत है, आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखती है कि विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: एक साथी कहते विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करके बाद में पछताना पड़े और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
0: बहुत सुंदर
1: उदाहरण देखिए लिखा है,
0: बहुत सुंदर कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच में जो हमें मेंटेन रखनी होती है
1: जी।
0: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता
1: और
0: है
1: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल
0: होता है। तो एक श्रोता लिखने की जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता बच्चों का हो मित्रों का हो व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
1: एक साथी कहते हैं विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा, सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है,
1: जीवन का सारी लिख दिया है
0: कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास जमाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में आप एक सेकंड लगाते हैं। देखिए कितना रिश्तों में सोचिए कदम कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
1: एक साथी कहते हैं एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे इसे कभी टूटने न दे।
0: सबसे बड़ी बात ये है। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
1: और अब गीत सुन लेते हैं
0: हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
1: कि गीत सुनवाएंगे।
0: बिल्कुल।

हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बैठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है। जी, एक साथ

0: व्यक्ति कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है, जिसे हमारे सामाजिक और व्यवसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सारे ही चलते हैं।
0: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम, एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: बिल्कुल मिलती है। और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं
1: और फिर क्या करेंगे हम,
0: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।
2: ये रातें ये मौसम

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूँ और विविध भारती से जुड़ा हूँ। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अरे वाह, अभी उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं कार्यक्रम, और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी है
0: जी।
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या व्यंजन पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है ना।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना, उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए। हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी।
1: अरे देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही सकते
0: और इसे बनाने में बिल्कुल

0: कोई तकलीफ नहीं है।
1: हाँ,
0: उसे रात को भिगोना है हमें
1: और सुबह ककड़ी और प्याज टमाटर धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं। नमक और काली मिर्च डालकर भी।
0: और अगर वो बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन गए
1: क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसाला ओट्स ओटमील साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जियों के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, इसके डोसे लड्डू। रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे से बने कुरकुरे डोसे, कम घी गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही जवार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा यानी जो जवारी है या फिर बाजरा है इसका खिचड़ा कहते हैं। इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है, उसे खिचड़ा कहते हैं। और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और जवार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली ना तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है। वो धीरे धीरे पकता रहता है, घंटों। फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं। तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है।
0: बहुत ताकत होती है। बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग इन्हें बड़े बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने।
1: और इसके साथ दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं। हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़ी का सेवन करते थे। तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती
0: जी। एक साथ ही कहते कि साबुत अनाज के व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं। बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है। और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और इन्हें हींग नमक हरी मिर्च बारीक काटकर मिला लें। अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें। इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं। इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही
1: बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज टमाटर ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले छान ले। फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने और बाद में कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले। लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे, चपटा चपटा कर लिया और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते। उसको तलते भी है और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं।
1: सेक ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें
0: जी,
1: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
0: जी।
1: और अब एक गाना सुन ली
0: जी।

0: मंदाकिनी जी, हमारी एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए वो जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली, तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है? तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया। हमारे सखी और सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही करती है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करते हैं और उन्हें शुक्रिया कहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहने या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता होना चाहिए।
1: तो हंसी और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: ಕೇಳುಗರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿಗಂಧ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 8:45. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಗಳು ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीटैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी. भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. श्रीलंका ने भरोसा दिलाया, कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा. भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा. विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते. और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इनमें 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी. नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी.
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में 400 गुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है. यहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा. कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो. तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए. इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है.
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है. इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है.
2: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट है. दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है. तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं.
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी.
2: वापसी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है. उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी. श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और

0: छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
4: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने को कंट्रीब्यूट करेगी।
0: श्री राजनाथ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास, सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
0: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने ये बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। UK MTO ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
0: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
5: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में NDRF की 10 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मौके में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहे ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
6: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
0: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वर्ल्ड

0: एक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states to boost connectivity. New Delhi and Colombo sign MOUs on upgradation of L-70 guns and defense cooperation. Sri Lanka assures it will never allow its territory to be used against India. India condemns attacks by Yemen's Houthi rebels on Saudi Arabia, says strikes threaten freedom of navigation in Bab al-Mandeb Strait. In sports, India end campaign at stage 3 of World Archery Para Series with 15 medals comprising 4 gold in Ahmedabad. And in Junior Asia Cup Hockey, Indian men's team enters semi-final with 15-0 victory over Chinese Taipei. Indonesians advance to quarter-final after goalless draw against hosts China. The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved 8 railway multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees across 9 states. The projects will cover around 1,196 kilometers and are expected to improve rail connectivity, ease congestion on existing routes and facilitate faster movement of passengers and freight. They are targeted for completion by 2029-30. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav gave details of the decisions taken by the Union Cabinet during a media briefing in New Delhi today. Mr. Vaishnav said the Cabinet has approved 5 multi-tracking projects covering 17 districts across Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana. The total estimated cost of these 5 projects is more than 10,021 crore rupees. Mr. Vaishnav said the government has also approved 3 multi-tracking railway projects at a total estimated cost of more than 10,700 crore rupees. These projects will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. The minister further informed that the government has decided to undertake 4-laning and quadrupling of all 7 high-density railway corridors.
2: रेलवे के 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स
3: द 7 हाई डेंसिटी रेलवे कॉरिडोर्स अलोंग विद सेवरल अदर कॉरिडोर्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू कैरी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इन द फ्यूचर आर बीइंग अपग्रेडेड टू 4 लाइन्स दिस आल्सो इंक्लूड्स द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली टू मुंबई मुंबई टू चेन्नई चेन्नई टू कोलकाता एंड कोलकाता टू मुंबई रूट्स इन एडिशन इट्स 2 डायगोनल्स द दिल्ली टू चेन्नई एंड मुंबई टू चेन्नई रूट्स आर आल्सो बीइंग क्वाड्रुपल्ड अलोंग विद द दिल्ली टू गुवाहाटी कॉरिडोर
2: ये दोनों डायगोनल्स फिर दिल्ली से गुवाहाटी
1: इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन ऑन द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट Information and Broadcasting Minister informed that the bullet train service will commence next year.
2: Bullet train ka inauguration 2027 mein fix hai.
3: The inauguration of the bullet train is scheduled for 2027 with construction work progressing at a very rapid pace. Initially, the plan was to open a 50-kilometer section between Surat and Bilimura. However, this has now been extended to a 100-kilometer section from Surat to Vapi. At the same time, work on the bullet train itself is also progressing rapidly. The first coach for testing was completed and made ready last week and the train is expected to be brought onto the tracks for testing by May or June next year.
2: Agle saal Mai June tak train patri pe aa jayegi testing ke liye.
1: Prime Minister Narendra Modi